0: दादे दा हौसला ते दादी दीआं दुआवां ने सब दे पैर छू सका दुनिया ते जिन्नियां भी मावां ने। मेरे लिए दुनिया गोरी आ भावें मैं आप पक्के रंग दा हां, मैं भैणा लई इज्जत ते मावां लई दुआवां मंगदा ते मावां लई खैर मंगदा।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में।

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन।

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

0: 50. CJMR 1320.
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार।

क्या हमारे किस्मत में ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

0: फिर जाए, मेरा यार जो धोखेबाज तो सुबह बिजली गिर जाए, मेरा यार जो धोखेबाज तो सुबह बिजली गिर जाए।
1: अरे के का है मेरा चढ़ रही है
0: बावड़ा हो रही है
1: हो ना मैं।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले, आवाज मिटा दे देश परदेश के सारे फासले।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

होता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

0: JMR 1320.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: redesigned for you.
1: Your home for community. CJMR 1320.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई न

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

में गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला। कैसा रहा यकायकी, नाचो नाचो नाचो नाचो। अरे धूम धूम थिरके जा, पाँव में जान जगा, धुमक धुमक नाचे जा।